0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Oggi in particolare sulla Costituzione Sacro Sanctum Concilium, sulla liturgia.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। हम वैटिकन द्वितीय महाधर्म सभा के धर्म सिद्धांत, विशेषकर साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम धर्म विधि पर अपनी धर्म शिक्षा माला को जारी रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब संत अगुस्टीन ख्रिस्त के रहस्यमय शरीर के बारे में नए दीक्षार्थियों को बताने की चाह रखते हैं, तो वे संत पौलुस के इन पदों का उपयोग करते हैं जिसे हमने अभी अभी सुना है। इस तरह आप सब मिलकर मसीह के शरीर हैं और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग। वे इस बात को जोड़ते हैं, यह स्वयं आपका रहस्य है जिसे आप प्राप्त करते हैं। आप जो हैं उसका प्रत्युत्तर यह कहते हुए देते हैं आमीन, और आपका यह उत्तर आपकी पहचान बनती है।
2: Vi si dice il corpo di Cristo e voi rispondete amen.
1: आपसे कहा जाता है ख्रिस्त का शरीर, और जवाब में आप कहते हैं आमीन। अतः आप ख्रिस्त के शरीर का अंग बने जिससे आपके आमीन की सत्यता साबित हो। आप जो देखते हैं और आप जो हैं उसे स्वीकार करें। संत पापा लियो ने यीशु की अंतिम व्यारी के भोज की याद दिलाते हुए कहा, धर्म विधि के धर्म सिद्धांत हमें संत अगुस्टीन के शब्दों में यूखारिस्त के बारे में कहते हैं। ख्रिस्तियों के लिए ख्रिस्त के भोज में शामिल होने का अर्थ ईश्वर के वचनों से शिक्षा ग्रहण करना है, उसके द्वारा पोषित होना और ईश्वर को धन्यवाद देना। हम उन्हें उनके शब्दों में और यूखारिस्त में ग्रहण करने के द्वारा वही बनते हैं जिसे हम ग्रहण करते हैं। हम वह शरीर बनते हैं जिसका शीर्ष पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त हैं, जो पिता के दाहिने विराजमान हैं, जो हमारे लिए स्वर्ग में एक स्थान तैयार करते हैं। इस भांति यूखारिस्त ईश्वर के राज्य का वह संस्कार है जो आने वाला है। यह वह रोटी है जो स्वर्ग हमारे निवास की ओर यात्रा करने हेतु हमें अग्रसर करती है, उस पुण्य समय तक जब ईश्वर सब कुछ पर शासन करेंगे। संत पापा ने कहा कि विश्वासियों का समुदाय धर्म विधि के दौरान न सिर्फ पुरोहित के हाथों से बल्कि उनके संग बलि अर्पित करते हैं। इस दृष्टिकोण से यूखारिस्त ख्रिस्तियों के लिए आध्यात्मिक बलि का स्वरूप है, ईश्वर और एक दूसरे के संग एकता का मार्ग। इसमें सहभागी होते हुए वे इस बात को सीखते हैं, अपने को समर्पित करने ख्रिस्त की मध्यस्थता द्वारा वे अपने को प्रतिदिन ईश्वर और एक दूसरे के संग एक गहरे संबंध में प्रवेश करता हुआ पाते हैं। इस भांति ख्रिस्त के संग अपने को एक शरीर बनाते हुए यूखारिस्त हमें यीशु ख्रिस्त की जीवन शैली को अपनाने की शिक्षा देती है, जहां हम उन्हें अपने को स्वतंत्र उपहार स्वरूप देते हैं। यह उपहार हमें एकता के आयाम से संयुक्त करता है, जो हमें दुनिया, हमारे समुदायों, हमारे परिवारों और हमारे हृदयों को बांटने वाली ताकतों के मध्य हमें एक शक्तिशाली मार्ग बनाती है। संत पापा लियो ने कहा,
2: Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia, siamo invitati ad ascoltare la parola di Dio e a nutrirci alla mensa del Signore.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, जब हम यूखारिस्त में सहभागी होते हैं, तो हम ईश्वर के वचनों को सुनने और अपने को उनकी मेज से पोषित करने हेतु बुलाए जाते हैं, जहां वे अपने को पिता के लिए अर्पित करते हैं। मिस्सा के ये दो भाग, शब्द समारोह और यूखारिस्त की धर्म विधि, ये दोनों अपने में इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि वे अपने में पूजन विधि एक ही कार्य लगते हैं। संत पापा ने कहा कि ईश वचन के संबंध में हमारे लिए इस बात को याद करने की आवश्यकता है कि यह अपने में सिर्फ बौद्धिक रूप में धर्म ग्रंथ का ज्ञान हासिल करना नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के सजीव और सक्रिय वचनों को ग्रहण करना है, जिसे ईश्वर हम में से हर एक को और हर समय व्यक्तिगत रूप में कहते हैं। ईश्वर का वचन हमें यूखारिस्त की रोटी के संग पोषित और मजबूत बनाए रखता और हमें पापों की सड़न से दूर करते हुए ख्रिस्त में नया जीवन प्रदान करता है। यूखारिस्त हमें धर्म ग्रंथ की समझ हेतु खोलता है, वैसे ही जैसे कि धर्म ग्रंथ अपने में यूखारिस्त के रहस्य की चर्चा हमारे लिए करता और उसे हमारे लिए प्रज्वलित करता है। वैटिकन द्वितीय महासभा हमें इस बात के लिए निमंत्रण देती है कि हम बाइबल की निधियों को और अधिक रूप में खुला रखें, जिससे विश्वासियों को ईश्वर के वचन रूपी मेज से बेहतर भोजन मिल सके। धर्म विधि में लाई गई नवीनता ने इस समृद्धि को धर्म विधि के पाठ संग्रह में संयुक्त किया है। वह पुस्तिका जिसमें धर्म ग्रंथ के पाठों को धार्मिक अनुष्ठान के लिए संग्रहित किया गया है। इस समृद्धि को हम शुद्ध जीवित परंपरा से लिया गया पाते हैं, जो परंपरा के प्रति निष्ठा को वैध प्रगति हेतु खुलेपन के साथ जोड़ता है। संत पापा लियो ने कहा,
2: L'inizio del capitolo secondo della Costituzione sulla liturgia è intessuto di riferimenti al grande fiume della tradizione.
1: धर्म विधि हेतु धर्म सिद्धांत के अध्याय दो में हम परंपराओं की एक वृहद समृद्धि को पाते हैं, जो कलिसा के आचार्यों से हमारे लिए प्रवाहित होती है। उन्होंने उद्धृत करते हुए कहा, अंतिम व्यारी के समय उस रात को जब उन्हें धोखा दिया गया था, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने शरीर और रक्त का बलिदान अर्पित करते हुए यूखारिस्त की स्थापना की। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि क्रूस के बलिदान को सदियों तक बनाए रखा जा सके, जब तक कि वे दोबारा न आए, और इस तरह अपनी प्यारी वधु कलिसिया को अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की यादगारी सौंपी। प्रेम का एक संस्कार, एकता की निशानी, करुणा का संबंध, पास्का का एक भोज जिसमें हम ख्रिस्त को ग्रहण करते हैं, जहां हमारा मन कृपा से भर जाता है और हमें भविष्य में महिमा की प्रतिज्ञा की जाती है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, आइए हम विश्वास में दिव्य जीवन और उस रहस्य से अपने को परिवर्तित होने दें जिसकी यादगारी हम मनाते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने बुधवार 24 जून को फादर आनंद डेविड खलखो को रांची महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। वे अभी रांची महाधर्म प्रांत के विकर जनरल और रांची में संत मरिया महागिरजा घर के पल्ली पुरोहित के रूप में कार्यरत हैं। नवनियुक्त सहायक धर्माध्यक्ष आनंद डेविड खलखो का जन्म 20 नवंबर 1975 को रांची महाधर्म प्रांत के मांडर में हुआ। उन्होंने कोलकाता के संत जॉन वियानी माइनर सेमिनरी, संत अल्बर्ट कॉलेज मेजर सेमिनरी और रांची में संत जेबियस कॉलेज में पढ़ने के बाद रांची के संत अल्बर्ट कॉलेज में ईश शास्त्र की पढ़ाई की। 15 मई 2006 को रांची महाधर्म प्रांत के लिए उनका पुरोहिताभिषेक किया गया। पुरोहित के रूप में वे 2006 से 2009 तक कार्डिनल टोप्पो के पर्सनल सेक्रेटरी रहे। 2009 से 2011 तक मैंगलोर के मुल्लर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल प्रशासन के प्रबंधन में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। फिर 2011 से 2015 तक CBCI सोसाइटी फॉर मेडिकल एजुकेशन उत्तर भारत के सह निदेशक और तत्कालीन बिझान रीजन के धर्माध्यक्ष पुरोहितों के परिषद के अध्यक्ष थे। 2011 से 2020 तक लीवंस हॉस्पिटल प्रोजेक्ट मांडर के निदेशकों की समिति के सदस्य, 2015 से 2017 तक CBCI दिल्ली के महासचिव के सचिव, 2017 से 2020 जनसंपर्क अधिकारी, 2019 से 2020 तक रांची में महाधर्माध्यक्ष निवास के प्रबंधक और 2020 से रांची में संत मरिया महागिरजा घर के पल्ली पुरोहित, 2021 से रांची में सामाजिक विकास केंद्र के निदेशक और 2022 से रांची में सेमिनारियों के निदेशक तथा 2024 से रांची के विकर जनरल के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। और हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी कल्पना, आपकी कहानी कहने की सृजनशीलता और आपकी जिंदा दिली सोच की जरूरत है। हमें आज़ादी और सच्चाई की जगहें बनाने के लिए इनकी ज़रूरत है, जहां ईश्वर की कृपा सुकून और शांति का वादा दे सके। यह हौसला संत पापा लियो 14वें ने बुधवार को दुनिया के कई हिस्सों से आए लेखकों को दिया, जो 1926 में बने वाटिकन प्रकाशन भवन लिब्रेरिया एडिट्रिच वाटिकाना की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर रोम में एकत्रित हुए हैं। संत पापा ने कहा, सबसे पहले लिखना सच और खुलासे का काम है, क्योंकि यह बताता है कि हम कौन हैं, हम क्या मानते हैं और क्या उम्मीद करते हैं, हम किस दुनिया के लिए कोशिश करते हैं और हम किस भविष्य का सपना देखते हैं। संत पापा ने कहा, सच की इस खोज में हम महसूस करते हैं कि सच बहुत छोटा है, जो ईश्वर के साथ हमारी अंदरूनी बातचीत में और हमारे पड़ोसियों के साथ हमारी खुली और शिष्ट बातचीत में खुद को हमारे सामने लाता है। संत पापा ने उन्हें चेतावनी दी कि हम कभी भी सच के मालिक नहीं होते, अगर कुछ है तो वह सच ही है जो हमें जीतता है। संत पापा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लेखक दूसरों को सच की ओर खींचने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वे खुद भी इसकी ओर खींचे चले आते हैं। संत पापा ने कहा कि लिखना इंसानियत का काम है, यह देखते हुए कि साहित्य इंसानी अनुभव के परे पहुंच को शामिल करता है, एक ऐसा नजरिया हासिल करता है जो हमारी इंसानियत को बढ़ाता है। हम एक कल्पनाशील हमदर्दी विकसित करते हैं, जो हमें यह पहचानने में मदद करती है कि दूसरे असलियत को कैसे देखते हैं, अनुभव करते हैं और उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। संत पापा ने कहा कि जब वे कहानियां लिखते हैं तो पढ़ने वाले उनसे जुड़ जाते हैं, उनके नजरिए भावनाओं, एहसासों और नजरिए को समझ पाते हैं। उधर चर्चा और संवाद, अनुभवों का आदान प्रदान और एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ना, भाई बहन बनना और भाईचारे के बंधन को बनाने एवं मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध होना, यूरोप में बौद्ध, क्रिश्चिय, हिंदू, जैन और सिख संवाद और सहयोग के माध्यम से भाईचारे का निर्माण, शीर्षक सम्मेलन का यही अर्थ है, जो 23 और 24 जून तक रोम में संत थॉमस अक्वाइनस के पोंटिफिकल विश्वविद्यालय में हो रहा है। पहल के आयोजकों में से एक अंतरधार्मिक संवाद परिषद के प्रीफेक्ट कार्डिनल जॉर्ज जेकब कुआ कार्ड ने अपने अभिवादन में इस बात पर जोर दिया कि भाईचारे की अवधारणा को अक्सर एक काल्पनिक विचार माना जाता है, खासकर ऐसे समय में जब यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मानवता के खिलाफ अपराधों, युद्धों, हिंसा, संघर्ष, विभाजन, भेदभाव और नफरत से गंभीर रूप से कमजोर हो गया है। कार्डिनल कुआ कार्ड ने 1986 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा बुलाए गए शांति के लिए विश्व प्रार्थना दिवस की 40वीं वर्षगांठ और सार्वभौमिक भाईचारे से प्रेरित संत फ्रांसिस की मृत्यु की 800वीं वर्षगांठ से पहले असीसी की भावना को याद किया, जिन्होंने संत पापा फ्रांसिस के मानव भाईचारे पर विश्व पत्र फ्रातेली तुती को प्रेरित किया था। कार्डिनल कुआ कार्ड ने संवाद और सहयोग के माध्यम से विश्वासियों और अच्छे इरादों वाले लोगों के बीच पुल बनाने की आवश्यकता पर संत पापा लियो 14वें के शब्दों पर भी विचार किया। कार्डिनल कुआ कार्ड ने कहा कि संत पापा के लिए भाईचारा एक जीवित वास्तविकता है जो संघर्षों, मतभेदों और तनावों से अधिक मजबूत है, जो संस्कृतियों, संवेदनाओं और परंपराओं को पारस्परिक संवर्धन के अवसर में बदल देती है। उधर पूरे यूरोप में एक बहुत ज्यादा गर्मी की लहर चल रही है, जो अफ्रीका की ओर से दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है। जून में इतना ज्यादा और इतना लगातार तापमान पहले कभी देखा नहीं गया था और विशेषज्ञों का अंदाजा है कि गर्मी इस महीने के अंत तक कम नहीं होगी। कुछ का अंदाजा है कि यह 5 जुलाई तक चलेगी। फ्रांस में ठंडा करने की कोशिश में 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि इटली में आज 15 शहर रेड लिस्ट में हैं और कुछ लोग इसके लिए जलवायु परिवर्तन को दोष दे रहे हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.ovolodisanpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Oggi in particolare sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, sulla liturgia.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। हम वैटिकन द्वितीय महाधर्म सभा के धर्म सिद्धांत, विशेषकर साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम धर्म विधि पर अपनी धर्म शिक्षा माला को जारी रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब संत अगुस्टीन ख्रिस्त के रहस्यमय शरीर के बारे में नए दीक्षार्थियों को बताने की चाह रखते हैं, तो वे संत पौलुस के इन पदों का उपयोग करते हैं जिसे हमने अभी अभी सुना है। इस तरह आप सब मिलकर मसीह के शरीर हैं और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग। वे इस बात को जोड़ते हैं, यह स्वयं आपका रहस्य है जिसे आप प्राप्त करते हैं। आप जो हैं उसका प्रत्युत्तर यह कहते हुए देते हैं आमीन, और आपका यह उत्तर आपकी पहचान बनती है।
2: Vi si dice il corpo di Cristo e voi rispondete amen.
1: आपसे कहा जाता है ख्रिस्त का शरीर और जवाब में आप कहते हैं आमीन, अतः आप ख्रिस्त के शरीर का अंग बने जिससे आपके आमीन की सत्यता साबित हो। आप जो देखते हैं और आप जो हैं उसे स्वीकार करें। संत पापा लियो ने यीशु की अंतिम व्यारी के भोज की याद दिलाते हुए कहा, धर्म विधि के धर्म सिद्धांत हमें संत अगुस्टिन के शब्दों में यूखारिस्त के बारे में कहते हैं, ख्रिस्तियों के लिए ख्रिस्त के भोज में शामिल होने का अर्थ ईश्वर के वचनों से शिक्षा ग्रहण करना है, उसके द्वारा पोषित होना और ईश्वर को धन्यवाद देना। हम उन्हें उनके शब्दों में और यूखारिस्त में ग्रहण करने के द्वारा वही बनते हैं जिसे हम ग्रहण करते हैं। हम वह शरीर बनते हैं जिसका शीर्ष पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त हैं, जो पिता के दाहिने विराजमान हैं, जो हमारे लिए स्वर्ग में एक स्थान तैयार करते हैं। इस भांति यूखारिस्त ईश्वर के राज्य का वह संस्कार है जो आने वाला है। यह वह रोटी है जो स्वर्ग हमारे निवास की ओर यात्रा करने हेतु हमें अग्रसर करती है, उस पुण्य समय तक जब ईश्वर सब कुछ पर शासन करेंगे। संत पापा ने कहा कि विश्वासियों का समुदाय धर्म विधि के दौरान न सिर्फ पुरोहित के हाथों से बल्कि उनके संग बलि अर्पित करते हैं। इस दृष्टिकोण से यूखारिस्त ख्रिस्तियों के लिए आध्यात्मिक बलि का स्वरूप है, ईश्वर और एक दूसरे के संग एकता का मार्ग। इसमें सहभागी होते हुए वे इस बात को सीखते हैं, अपने को समर्पित करने ख्रिस्त की मध्यस्थता द्वारा वे अपने को प्रतिदिन ईश्वर और एक दूसरे के संग एक गहरे संबंध में प्रवेश करता हुआ पाते हैं। इस भांति ख्रिस्त के संग अपने को एक शरीर बनाते हुए यूखारिस्त हमें यीशु ख्रिस्त की जीवन शैली को अपनाने की शिक्षा देती है, जहां हम उन्हें अपने को स्वतंत्र उपहार स्वरूप देते हैं। यह उपहार हमें एकता के आयाम से संयुक्त करता है, जो हमें दुनिया, हमारे समुदायों, हमारे परिवारों और हमारे हृदयों को बांटने वाली ताकतों के मध्य हमें एक शक्तिशाली मार्ग बनाती है। संत पापा लियो ने कहा,
2: Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia, siamo invitati ad ascoltare la parola di Dio e a nutrirci alla mensa del Signore.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, जब हम यूखारिस्ट में सहभागी होते हैं, तो हम ईश्वर के वचनों को सुनने और अपने को उनकी मेज से पोषित करने हेतु बुलाए जाते हैं, जहां वे अपने को पिता के लिए अर्पित करते हैं। मिस्सा के ये दो भाग, शब्द समारोह और यूखारिस्ट की धर्म विधि, ये दोनों अपने में इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि वे अपने में पूजन विधि एक ही कार्य लगते हैं। संत पापा ने कहा कि ईश वचन के संबंध में हमारे लिए इस बात को याद करने की आवश्यकता है कि यह अपने में सिर्फ बौद्धिक रूप में धर्म ग्रंथ का ज्ञान हासिल करना नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के सजीव और सक्रिय वचनों को ग्रहण करना है, जिसे ईश्वर हम में से हर एक को और हर समय व्यक्तिगत रूप में कहते हैं। ईश्वर का वचन हमें यूखारिस्त की रोटी के संग पोषित और मजबूत बनाए रखता और हमें पापों की सड़न से दूर करते हुए ख्रिस्त में नया जीवन प्रदान करता है। यूखारिस्त हमें धर्म ग्रंथ की समझ हेतु खोलता है, वैसे ही जैसे कि धर्म ग्रंथ अपने में यूखारिस्त के रहस्य की चर्चा हमारे लिए करता और उसे हमारे लिए प्रज्वलित करता है। वैटिकन द्वितीय महासभा हमें इस बात के लिए निमंत्रण देती है कि हम बाइबल की निधियों को और अधिक रूप में खुला रखें, जिससे विश्वासियों को ईश्वर के वचन रूपी मेज से बेहतर भोजन मिल सके। धर्मविधि में लाई गई नवीनता ने इस समृद्धि को धर्मविधि के पाठ संग्रह में संयुक्त किया है। वह पुस्तिका जिसमें धर्म ग्रंथ के पाठों को धार्मिक अनुष्ठान के लिए संग्रहित किया गया है। इस समृद्धि को हम शुद्ध जीवित परंपरा से लिया गया पाते हैं, जो परंपरा के प्रति निष्ठा को वैध प्रगति हेतु खुलेपन के साथ जोड़ता है। संत पापा लियो ने कहा,
2: L'inizio del capitolo secondo della Costituzione sulla liturgia è intessuto di riferimenti al grande fiume della tradizione.
1: धर्मविधि हेतु धर्म सिद्धांत के अध्याय दो में हम परंपराओं की एक वृहद समृद्धि को पाते हैं, जो कलिसिया के आचार्यों से हमारे लिए प्रवाहित होती है। उन्होंने उद्धृत करते हुए कहा, अंतिम व्यारी के समय उस रात को जब उन्हें धोखा दिया गया था, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने शरीर और रक्त का बलिदान अर्पित करते हुए यूखारिस्त की स्थापना की। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया ताकि क्रूस के बलिदान को सदियों तक बनाए रखा जा सके, जब तक कि वे दोबारा न आए, और इस तरह अपनी प्यारी वधु कलिसिया को अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की यादगारी सौंपी। प्रेम का एक संस्कार, एकता के निशाने, करुणा का संबंध, पास्का का एक भोज जिसमें हम ख्रिस्त को ग्रहण करते हैं, जहां हमारा मन कृपा से भर जाता है और हमें भविष्य में महिमा की प्रतिज्ञा की जाती है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, आइए हम विश्वास में दिव्य जीवन और उस रहस्य से अपने को परिवर्तित होने दें जिसकी यादगारी हम मनाते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने बुधवार 24 जून को फादर आनंद डेविड खलखो को रांची महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। वे अभी रांची महाधर्म प्रांत के विकर जनरल और रांची में संत मरिया महागिरजा घर के पल्ली पुरोहित के रूप में कार्यरत हैं। नवनियुक्त सहायक धर्माध्यक्ष आनंद डेविड खलखो का जन्म 20 नवंबर 1975 को रांची महाधर्म प्रांत के मांडर में हुआ। उन्होंने कोलकाता की संत जॉन वियानी माइनर सेमिनरी, संत अल्बर्ट कॉलेज मेजर सेमिनरी और रांची में संत जेबियस कॉलेज में पढ़ने के बाद रांची के संत अल्बर्ट कॉलेज में ईश शास्त्र की पढ़ाई की। 15 मई 2006 को रांची महाधर्म प्रांत के लिए उनका पुरोहिताभिषेक किया गया। पुरोहित के रूप में वे 2006 से 2009 तक कार्डिनल टोप्पो के पर्सनल सेक्रेटरी रहे। 2009 से 2011 तक मैंगलोर के मुल्लर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल प्रशासन के प्रबंधन में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। फिर 2011 से 2015 तक CBCI सोसाइटी फॉर मेडिकल एजुकेशन उत्तर भारत के सह निदेशक और तत्कालीन बिझान रीजन के धर्माध्यक्ष पुरोहितों के परिषद के अध्यक्ष थे। 2011 से 2020 तक लीवंस हॉस्पिटल प्रोजेक्ट मांडर के निदेशकों की समिति के सदस्य, 2015 से 2017 तक CBCI दिल्ली के महासचिव के सचिव, 2017 से 2020 जनसंपर्क अधिकारी, 2019 से 2020 तक रांची में महाधर्माध्यक्ष निवास के प्रबंधक और 2020 से रांची में संत मरिया महागिरजा घर के पल्ली पुरोहित, 2021 से रांची में सामाजिक विकास केंद्र के निदेशक और 2022 से रांची में सेमिनारियों के निदेशक तथा 2024 से रांची के विकर जनरल के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। और हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी कल्पना, आपकी कहानी कहने की सृजनशीलता और आपकी जिंदा दिली सोच की जरूरत है। हमें आजादी और सच्चाई की जगहें बनाने के लिए इनकी जरूरत है, जहां ईश्वर की कृपा सुकून और शांति का वादा दे सके। यह हौसला संत पापा लियो 14वें ने बुधवार को दुनिया के कई हिस्सों से आए लेखकों को दिया, जो 1926 में बने वाटिकन प्रकाशन भवन लिब्रेरिया एडिट्रिच वाटिकाना की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर रोम में एकत्रित हुए हैं। संत पापा ने कहा, सबसे पहले लिखना सच और खुलासे का काम है, क्योंकि यह बताता है कि हम कौन हैं, हम क्या मानते हैं और क्या उम्मीद करते हैं, हम किस दुनिया के लिए कोशिश करते हैं और हम किस भविष्य का सपना देखते हैं। संत पापा ने कहा, सच की इस खोज में हम महसूस करते हैं कि सच बहुत छोटा है, जो ईश्वर के साथ हमारी अंदरूनी बातचीत में और हमारे पड़ोसियों के साथ हमारी खुली और शिष्ट बातचीत में खुद को हमारे सामने लाता है। संत पापा ने उन्हें चेतावनी दी कि हम कभी भी सच के मालिक नहीं होते, अगर कुछ है तो वह सच ही है जो हमें जीतता है। संत पापा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लेखक दूसरों को सच की ओर खींचने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वे खुद भी इसकी ओर खींचे चले आते हैं। संत पापा ने कहा कि लिखना इंसानियत का काम है, यह देखते हुए कि साहित्य इंसानी अनुभव के परे पहुंच को शामिल करता है, एक ऐसा नजरिया हासिल करता है जो हमारी इंसानियत को बढ़ाता है। हम एक कल्पनाशील हमदर्दी विकसित करते हैं, जो हमें यह पहचानने में मदद करती है कि दूसरे असलियत को कैसे देखते हैं, अनुभव करते हैं और उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। संत पापा ने कहा कि जब वे कहानियां लिखते हैं तो पढ़ने वाले उनसे जुड़ जाते हैं, उनके नजरिए, भावनाओं, एहसासों और नजरिए को समझ पाते हैं। उधर चर्चा और संवाद, अनुभवों का आदान प्रदान और एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ना, भाई बहन बनना और भाईचारे के बंधन को बनाने एवं मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध होना, यूरोप में बौद्ध, क्रिश्चिय, हिंदू, जैन और सिख संवाद और सहयोग के माध्यम से भाईचारे का निर्माण, शीर्षक सम्मेलन का यही अर्थ है जो 23 और 24 जून तक रोम में संत थॉमस अक्वाइनस के पोंटिफिकल विश्वविद्यालय में हो रहा है। पहल के आयोजकों में से एक अंतरधार्मिक संवाद परिषद के प्रीफेक्ट कार्डिनल जॉर्ज जेकब कुआ कार्ड ने अपने अभिवादन में इस बात पर जोर दिया कि भाईचारे की अवधारणा को अक्सर एक काल्पनिक विचार माना जाता है, खासकर ऐसे समय में जब यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मानवता के खिलाफ अपराधों, युद्धों, हिंसा, संघर्ष, विभाजन, भेदभाव और नफरत से गंभीर रूप से कमजोर हो गया है। कार्डिनल कुआ कार्ड ने 1986 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा बुलाए गए शांति के लिए विश्व प्रार्थना दिवस की 40वीं वर्षगांठ और सार्वभौमिक भाईचारे से प्रेरित संत फ्रांसिस की मृत्यु की 800वीं वर्षगांठ से पहले असीसी की भावना को याद किया, जिन्होंने संत पापा फ्रांसिस के मानव भाईचारे पर विश्व पत्र फ्रातेली तुती को प्रेरित किया था। कार्डिनल कुआ कार्ड ने संवाद और सहयोग के माध्यम से विश्वासियों और अच्छे इरादों वाले लोगों के बीच पुल बनाने की आवश्यकता पर संत पापा लियो 14वें के शब्दों पर भी विचार किया। कार्डिनल कुआ कार्ड ने कहा कि संत पापा के लिए भाईचारा एक जीवित वास्तविकता है जो संघर्षों, मतभेदों और तनावों से अधिक मजबूत है, जो संस्कृतियों, संवेदनाओं और परंपराओं को पारस्परिक संवर्धन के अवसर में बदल देती है। उधर पूरे यूरोप में एक बहुत ज्यादा गर्मी की लहर चल रही है जो अफ्रीका की ओर से दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है। जून में इतना ज्यादा और इतना लगातार तापमान पहले कभी देखा नहीं गया था और विशेषज्ञों का अंदाजा है कि गर्मी इस महीने के अंत तक कम नहीं होगी। कुछ का अंदाजा है कि यह 5 जुलाई तक चलेगी। फ्रांस में ठंडा करने की कोशिश में 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि इटली में आज 15 शहर रेड लिस्ट में हैं और कुछ लोग इसके लिए जलवायु परिवर्तन को दोष दे रहे हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesanpietro.va पर जरूर जाएं।

0: Twitter.
1: Non, non, mais attends, mais
2: oui, c'est toi.

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे, तीसरे

0: अमृत को कन्याएं करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: नाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का पहला भेद, यीशु यर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का दूसरा भेद, काना के विवाह भोज में यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का तीसरा भेद, मन परिवर्तन के आह्वान के साथ प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर।

0: हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: ज्योति का चौथा भेद, प्रभु यीशु का रूपांतरण हो जाता है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का पांचवा भेद, पास का रहस्य के सांस्कारिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है।

0: वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नवियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। पिता और

0: लाउडेटुर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न है। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नता पूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और हमारी शांति का स्रोत हैं।

जो उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। जो बुद्धिमान है वह हर काम का उपयुक्त समय और उचित ढंग जानता है, क्योंकि हर काम का उपयुक्त समय और ढंग होता है। मनुष्य के लिए यह बड़े दुख की बात है कि वह भविष्य को नहीं जानता। उसे कौन बता सकता है कि क्या होने वाला है? किसी को अपने प्राणों पर अधिकार नहीं, कोई उन्हें नहीं रोक सकता। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय के 5 से लेकर 8 तक के पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 16 पदों वाले उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय में उपदेशक सुलेमान बुद्धिमान कौन है, शासन किस प्रकार का होना चाहिए तथा ईश योजनाओं को समझने में मानव बुद्धि की असमर्थता के प्रति बाइबल पाठकों का ध्यान आकर्षित कराता है। उक्त पदों में वह राजा, शासक और हमारे सृष्टिकर्ता के संदर्भ में कहता है कि जो उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। इस धरती पर अपने से ऊपर शासकों की आज्ञा के अनुसार चलने पर ही जीवन सुव्यवस्थित रहता है। यदि समाज में व्यवस्था न हो तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए जब तक इस धरती पर हम हैं उन अधिकारियों के अधीन रहें जो हमारे ऊपर हैं। इसी प्रकार ईश्वर द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुकूल अपना जीवन यापन करें। उपदेशक हम सबको स्मरण दिलाता है कि ईश नियमों का पालन करने पर हमारा कभी भी अनिष्ट नहीं होगा। उपदेशक कहता है हर काम का उचित समय और तरीका होता है और उसी तरह हमें अपने कामों का संपादन करना चाहिए। श्रोताओं, जब व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है तब उसका दुख अनायास ही बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में उपदेशक हमें याद दिलाता है कि हर काम का और हर मामले का एक निश्चित समय होता है और एक सुनिश्चित तरीका होता है। हालांकि बुद्धिमान व्यक्ति जान लेता है कि उसे कब क्या करना है, तथापि वह सब कुछ नहीं जान सकता। सब कुछ का फैसला अपने आप से नहीं ले सकता। उसे भी मौन रहकर प्रार्थना और चिंतन करने के बाद ही यह विवेक मिलता है। फिर उपदेशक कहता है कि मनुष्य के लिए यह बड़े दुख की बात है कि वह भविष्य को नहीं जानता। उसे कौन बता सकता है कि क्या होने वाला है? फिर कहता है किसी को अपने प्राणों पर अधिकार नहीं, कोई उन्हें नहीं रोक सकता। श्रोताओं, हम सब जानते हैं कि प्राणों पर अधिकार किसी का नहीं होता। किसी के पास वह शक्ति नहीं कि वह अपने मौत के दिन को रोक ले, और इसीलिए बाइबल धर्म ग्रंथ ईश नियमों के अनुपालन का मार्ग दिखलाता है। जीवन पर उसकी समझ की कमी ने ही सुलेमान को निराश कर दिया था। तब वह समझ पाया कि मौत के सामने इंसान की बेबसी और भी ज्यादा निराशाजनक हो जाती है। उसने देखा कि मौत किसी को जीतने नहीं देती और उस लड़ाई से किसी को छुटकारा नहीं मिलता। इसीलिए कहता है जो उसकी यानी कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होगा।

श्रोताओं, उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय के 8वें पद की अग्रिम पंक्ति पर दृष्टि डालें तो इसमें लिखा है, जिस तरह युद्ध के समय किसी को छुट्टी नहीं मिलती, उसी तरह दुष्टों को अपनी दुष्टता से मुक्ति नहीं मिलती। जैसे हवा को रोकने की ताकत किसी में नहीं होती, वैसे ही मौत को रोकने की शक्ति किसी में नहीं होती। इसी प्रकार उपदेशक कहता है कि युद्ध के समय किसी को छुट्टी नहीं मिलती, वहां अवकाश या आराम का दिन नहीं होता, बस लड़ते रहना पड़ता है। उसी प्रकार जो मनुष्य बुराई में लग जाते हैं, बुराई उनका पीछा कभी नहीं छोड़ती। अस्तु, भलाई इसी में है कि हम खुद प्रयास करें कि बुराई हमसे अलग रहे। सूक्ति ग्रंथ के 5वें अध्याय के 22वें पद में भी स्मरण दिलाया गया है। लिखा है, दुष्ट अपने ही कुकर्मों के जाल में फंसता है, वह अपने ही पापों के बंधन में बंध जाता है। और फिर संत योहन रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय के 34वें पद के अनुसार प्रभु येसु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय के 9 से लेकर 13 तक के पदों का पाठ करें। ये पद इस प्रकार हैं, मैंने यह सब देखा जब मैं संसार के समस्त कार्यकलाप पर विचार करता रहा, जहां मनुष्य दूसरों पर अधिकार जताता और उन्हें हानि पहुंचाता है। मैंने दुष्टों का दफन देखा, मंदिर से जाने के बाद लोगों ने उनका आचरण भुला दिया, यह भी व्यर्थ है। आगे कहता है, मनुष्य इसलिए अपने मन में बुरी योजनाएं बनाते रहते हैं कि अपराधियों को तुरंत दंड नहीं दिया जाता। दुष्ट सैकड़ों कुकर्म करने के बाद भी बहुत समय तक जीवित रहते हैं। फिर भी मैं जानता हूं कि ईश्वर के भक्तों का कल्याण होगा, क्योंकि वे ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं। किंतु दुष्ट का कल्याण नहीं होगा, वह छाया की तरह लुप्त होकर बहुत समय तक जीवित रहेगा, क्योंकि वह ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता। श्रोताओं, उपदेशक ग्रंथ के उक्त पद मनुष्य की असमर्थता पर चिंतन प्रस्तुत करते हैं। सत्ता या ताकत का अनुचित लाभ उठाने वालों को ये पद फटकार बताते हैं। फिर यह भी प्रकाशित करते हैं कि ईश्वर के न्याय में विलंब हो जाने से हम कई बार निराश हो जाते हैं। जब दुष्ट को कुछ समय के लिए सजा नहीं मिलती तो बुराई करने की उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। श्रोताओं, उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय का 9वां पद एक ऐसी स्थिति पेश करता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी साबित हो सकती है, क्योंकि अभी भी विश्व के कई हिस्सों में शासक और अधिक तानाशाही पर उतर रहे हैं और सरकारी दफ्तरों में भी हमें यही देखने को मिल रहा है। यह स्मरण रखना होगा कि किसी समुदाय के अंदर की सच्चाई हमेशा उन मार्गों का अनुसरण नहीं करती जिनकी हम उम्मीद करते हैं और जो सही और न्यायपूर्ण होते हैं। दुष्टों को बहुत बार लंबी आरामदायक जिंदगी और दौलत का आशीर्वाद मिलता है और शहर में उन्हें भलाई करने वाला माना जाता है, भला माना जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत भले व्यक्तियों के साथ अन्याय होता है। वे उन ताकतवरों के राज में दुख उठाते हैं जो उन पर अधिकार जताते हैं। सताने वाले अपनी नफरत में और मजबूत होते जाते हैं, जबकि भले लोग दूसरों की दृष्टि में और नीचे गिर जाते हैं। अस्तु श्रोताओं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि सुलेमान ने इस ना इंसाफी को व्यर्थ निरूपित किया है। तथापि इसके बावजूद वह भरोसा दिलाता है कि भले लोग अंततः दुष्टों से बेहतर करेंगे। कहता है, फिर भी मैं यह जानता हूं कि ईश्वर के भक्तों का कल्याण होगा, क्योंकि वे ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। उत्तरी अमेरिका में येसु समाजी कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी संघ के साथ एक मुलाकात में पोप लियो चौदहवें ने कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी समाज के सामने आने वाले मुद्दों का सामना करने के लिए आदर्श जगह हो सकते हैं। पोप लियो ने गुरुवार 25 जून को संघ से कहा कि सच्चाई की खोज को बढ़ावा देकर हाशिए पर पड़े लोगों एवं युवाओं के करीब रहकर और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करके कॉलेज और यूनिवर्सिटी आज मानव के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण जगह बन सकते हैं। अपने भाषण में पोप ने एक रोडमैप पेश किया कि ये संस्थान अपने सदस्यों को समाज के सबसे जरूरी मुद्दों का सामना करने में कैसे मदद कर सकते हैं। पोप ने येसु समाजों की चार मुख्य प्रेरिताएं से प्रेरणा ली। ये विषय वस्तु 2019 में बनाई गई थी और इसका मकसद है अगले 10 सालों के लिए येसु समाज के काम को निर्देशित करना। इसकी प्राथमिकताएं हैं ईश्वर का रास्ता दिखाना, बहिष्कृत लोगों के साथ चलना, युवाओं के साथ यात्रा करना और हमारे साझा घर की देखभाल करना। ईश्वर का रास्ता दिखाने वाले विषय के संबंध में पोप ने बताया कि जो लोग अनुसंधान करते हैं, जो अध्ययन करते हैं और जो सत्य की खोज करते हैं, वे अंततः ईश्वर की तलाश कर रहे हैं, चाहे उन्हें इसका एहसास हो या ना हो। उन्होंने शैक्षणिक समुदाय बनाने के महत्व पर जोर दिया जिसमें सदस्य सच्चाई को जान सकें और युवाओं के बीच ईश्वर के प्रति बढ़ती भूख का जवाब दे सकें। इस संबंध में पोप ने येसु समाजों से आध्यात्मिक अभ्यासों में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित किया ताकि वे महत्वपूर्ण निर्णयों पर आत्मपरक करने में भी मदद कर सकते हैं। पोप लियो ने अपना संदेश इस आह्वान के साथ समाप्त किया कि येसु समाजी अपने संस्थापक संत इग्नासियस लॉयला की मदद से जेसुइट परंपरा को जारी रखें। वैटिकन पब्लिशिंग हाउस ने नई किताब प्रभु हमारा हाथ थामे हुए हैं का अंग्रेजी संस्करण जारी किया है जिसमें पोप बेनेडिक्ट 16वें के उन प्रवचनों को एक साथ लाया गया है जो पहले प्रकाशित नहीं हुए थे। ये प्रवचन पोप बेनेडिक्ट 16वें ने अपने कार्यकाल एवं अपने इस्तीफे के बाद व्यक्तिगत ख्रिस्त्याग में दिए थे। यह खंड जो मूल रूप से वैटिकन प्रकाशन केंद्र द्वारा इटालियन में इल सिनियोरे चितियेने पर मानो शीर्षक से प्रकाशित किया गया है 2005 एवं 2017 के बीच आगमन काल, चालीसा काल और पास्का काल के दौरान दिए गए उपदेशों को संग्रहित करता है। रिकार्डो बोलाती, लुका कारोसो और फादर फेडरिको लोम्बार्डी एसजे द्वारा संपादित इस किताब में पोप बेनेडिक्ट 16 के पूर्व निजी सचिव महाधर्मदर्श जॉर्ज गेंसवाइन की एक प्रस्तावना और फादर फेडरिको लोम्बार्डी की एक भूमिका शामिल है। ये प्रवचन पोप बेनेडिक्ट 16 द्वारा व्यक्तिगत ख्रिस्त्याग के दौरान दिए गए थे जब वे पोप के रूप में कार्यरत थे और बाद में सेवानिवृत्त पोप के रूप में भी। कुछ प्रवचन प्रेरितिक आवास के चैपल में दिए गए थे जबकि कुछ वैटिकन में मातर एक्लेसिया मठ में दिए गए थे जहां पोप बेनेडिक्ट 16 पोप पद से इस्तीफा देने के बाद रहते थे। हालांकि ये प्रवचन प्राइवेट माहौल में दिए गए थे लेकिन ये पोप बेनेडिक्ट 16 के प्रवचन की गहराई और सादगी को दिखाते हैं। ये उपदेश उनकी पौत्र धर्म ग्रंथ को हमेशा नए सिरे से पढ़ने की काबिलियत को दर्शाते हैं जिससे वे विश्वास, प्रार्थना और दैनिक ख्रिस्त जीवन के लिए रोशनी पाते थे। किताब के पन्ने यह भी दिखाते हैं कि कैसे जोसेफ रात्सिंगर ने अपने विश्वास के केंद्र में आमोद या रूखी सोच को नहीं बल्कि ख्रिस्त के साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखा। प्रवचनों में पोप बेनेडिक्ट 16 बार बार येसु के रहस्य पर लौटते हैं जो अपने लोगों के साथ रहते, उन्हें सहारा देते और उनका हाथ थामे रहते हैं। शीर्षक ही इस मुख्य समझ को बताता है। ख्रिस्त जीवन कोई अकेला रास्ता नहीं है बल्कि ईश्वर की उपस्थिति और दया से चलने वाला सफर है। यह संकलन पोप बेनेडिक्ट 16 के इस शास्त्रीय काम और उनके प्रेरित कार्यों के बीच की एकता को भी दर्शाता है। उनके विचारों में स्पष्टता, आध्यात्मिक गहराई और मसीह केंद्रित फोकस की पहचान है। प्रभु हमें हाथ से थामे रहते हैं पोप बेनेडिक्ट 16 के अप्रकाशित प्रवचनों का पहला खंड है। इसके बाद सामान्य समय के प्रवचनों को समर्पित एक दूसरा खंड आने की उम्मीद है। इटालियन संस्करण 17 मई को तुरिनो अंतर्राष्ट्रीय किताब मेले में पोप बेनेडिक्ट 16 मसीह एक भविष्य हैं
अप्रकाशित प्रवचन शीर्षक द्वारा एक मीटिंग के दौरान पेश किया गया था। वक्ताओं में फादर लोम्बार्डी और इटालियन संगीतकार, संगीत लेखक जुआने निंदो फेरेती तथा संचालक में वैटिकन संचार विभाग के प्रमुख संपादक आंद्रिया तोर्नेली उपस्थित थे। अंग्रेजी संस्करण के साथ प्रकाशित ये पहले अप्रकाशित किताब अब अधिक लोगों के लिए उपलब्ध है, जो पोप बेनेडिक्ट 16वें के उपदेशों और ख्रिस्त को विश्वास एवं इतिहास के केंद्र में रखने के उनके जीवन भर के निमंत्रण से एक नया अनुभव कराते हैं। सागर रविवार 2026 के लिए अपने संदेश में कार्डिनल माइकल चर्नी ने उन मुश्किल चुनौतियों पर जोर दिया है जिनका सामना आज समुद्री कर्मचारी करते हैं, क्योंकि आज समुद्र में तनाव, असुरक्षा, युद्ध और डर तेजी से बढ़ रहा है। हर साल जुलाई के दूसरे रविवार को दुनिया भर की ख्रिस्त कलीसिया सागर रविवार मनाती है। यह दिन समुद्री काम करने वालों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करने का दिन होता है। 2026 में यह दिन 12 जुलाई को पड़ेगा और इसकी विषय वस्तु है आशा के बंदरगाह, नाविकों के साथ कलीसिया। समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने वाले विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल माइकल चर्नी ने सागर रविवार के लिए एक संदेश लिखा है जिसका शीर्षक है, जहाज में लदा माल और व्यापार से परे समुद्र का मानवीय चेहरा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार। आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेतरस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesanpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और हमारी शांति का स्रोत हैं।

जो उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। जो बुद्धिमान है वह हर काम का उपयुक्त समय और उचित ढंग जानता है, क्योंकि हर काम का उपयुक्त समय और ढंग होता है। मनुष्य के लिए यह बड़े दुख की बात है कि वह भविष्य को नहीं जानता। उसे कौन बता सकता है कि क्या होने वाला है? किसी को अपने प्राणों पर अधिकार नहीं, कोई उन्हें नहीं रोक सकता। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय के 5 से लेकर 8 तक के पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 16 पदों वाले उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय में उपदेशक सुलेमान बुद्धिमान कौन है, शासन किस प्रकार का होना चाहिए तथा ईश योजनाओं को समझने में मानव बुद्धि की असमर्थता के प्रति बाइबल पाठकों का ध्यान आकर्षित कराता है। उक्त पदों में वह राजा, शासक और हमारे सृष्टिकर्ता के संदर्भ में कहता है कि जो उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। इस धरती पर अपने से ऊपर शासकों की आज्ञा के अनुसार चलने पर ही जीवन सुव्यवस्थित रहता है। यदि समाज में व्यवस्था न हो तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए जब तक इस धरती पर हम हैं उन अधिकारियों के अधीन रहें जो हमारे ऊपर हैं। इसी प्रकार ईश्वर द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुकूल अपना जीवन यापन करें। उपदेशक हम सबको स्मरण दिलाता है कि ईश नियमों का पालन करने पर हमारा कभी भी अनिष्ट नहीं होगा। उपदेशक कहता है हर काम का उचित समय और तरीका होता है और उसी तरह हमें अपने कामों का संपादन करना चाहिए। श्रोताओं, जब व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है तब उसका दुख अनायास ही बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में उपदेशक हमें याद दिलाता है कि हर काम का और हर मामले का एक निश्चित समय होता है और एक सुनिश्चित तरीका होता है। हालांकि बुद्धिमान व्यक्ति जान लेता है कि उसे कब क्या करना है, तथापि वह सब कुछ नहीं जान सकता। सब कुछ का फैसला अपने आप से नहीं ले सकता। उसे भी मौन रहकर प्रार्थना और चिंतन करने के बाद ही यह विवेक मिलता है। फिर उपदेशक कहता है कि मनुष्य के लिए यह बड़े दुख की बात है कि वह भविष्य को नहीं जानता। उसे कौन बता सकता है कि क्या होने वाला है? फिर कहता है, किसी को अपने प्राणों पर अधिकार नहीं, कोई उन्हें नहीं रोक सकता। श्रोताओं, हम सब जानते हैं कि प्राणों पर अधिकार किसी का नहीं होता। किसी के पास वह शक्ति नहीं कि वह अपने मौत के दिन को रोक ले, और इसीलिए बाइबल धर्म ग्रंथ ईश नियमों के अनुपालन का मार्ग दिखलाता है। जीवन पर उसकी समझ की कमी ने ही सुलेमान को निराश कर दिया था। तब वह समझ पाया कि मौत के सामने इंसान की बेबसी और भी ज्यादा निराशाजनक हो जाती है। उसने देखा कि मौत किसी को जीतने नहीं देती और उस लड़ाई से किसी को छुटकारा नहीं मिलता। इसीलिए कहता है, जो उसकी यानी कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होगा।

श्रोताओ, उपदेशक ग्रंथ के आठवें अध्याय के आठवें पद की अग्रिम पंक्ति पर दृष्टि डालें तो इसमें लिखा है, जिस तरह युद्ध के समय किसी को छुट्टी नहीं मिलती, उसी तरह दुष्टों को अपनी दुष्टता से मुक्ति नहीं मिलती। जैसे हवा को रोकने की ताकत किसी में नहीं होती, वैसे ही मौत को रोकने की शक्ति किसी में नहीं होती। इसी प्रकार उपदेशक कहता है कि युद्ध के समय किसी को छुट्टी नहीं मिलती, वहां अवकाश या आराम का दिन नहीं होता, बस लड़ते रहना पड़ता है। उसी प्रकार जो मनुष्य बुराई में लग जाते हैं, बुराई उनका पीछा कभी नहीं छोड़ती। अस्तु, भलाई इसी में है कि हम खुद प्रयास करें कि बुराई हमसे अलग रहे। सूक्ति ग्रंथ के पांचवें अध्याय के 22वें पद में भी स्मरण दिलाया गया है। लिखा है, दुष्ट अपने ही कुकर्मों के जाल में फंसता है, वह अपने ही पापों के बंधन में बंध जाता है। और फिर संत योहन रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय के 34वें पद के अनुसार प्रभु येसु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय के 9 से लेकर 13 तक के पदों का पाठ करें। ये पद इस प्रकार हैं, मैंने यह सब देखा जब मैं संसार के समस्त कार्यकलाप पर विचार करता रहा, जहां मनुष्य दूसरों पर अधिकार जताता और उन्हें हानि पहुंचाता है। मैंने दुष्टों का दफन देखा, मंदिर से जाने के बाद लोगों ने उनका आचरण भुला दिया, यह भी व्यर्थ है। आगे कहता है, मनुष्य इसलिए अपने मन में बुरी योजनाएं बनाते रहते हैं कि अपराधियों को तुरंत दंड नहीं दिया जाता। दुष्ट सैकड़ों कुकर्म करने के बाद भी बहुत समय तक जीवित रहते हैं। फिर भी मैं जानता हूं कि ईश्वर के भक्तों का कल्याण होगा, क्योंकि वे ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं। किंतु दुष्ट का कल्याण नहीं होगा, वह छाया की तरह लुप्त होकर बहुत समय तक जीवित रहेगा, क्योंकि वह ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता। श्रोताओ, उपदेशक ग्रंथ के उक्त पद मनुष्य की असमर्थता पर चिंतन प्रस्तुत करते हैं। सत्ता या ताकत का अनुचित लाभ उठाने वालों को ये पद फटकार बताते हैं। फिर यह भी प्रकाशित करते हैं कि ईश्वर के न्याय में विलंब हो जाने से हम कई बार निराश हो जाते हैं। जब दुष्ट को कुछ समय के लिए सजा नहीं मिलती तो बुराई करने की उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। श्रोताओ, उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय का 9वां पद एक ऐसी स्थिति पेश करता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी साबित हो सकती है, क्योंकि अभी भी विश्व के कई हिस्सों में शासक और अधिक तानाशाही पर उतर रहे हैं और सरकारी दफ्तरों में भी हमें यही देखने को मिल रहा है। यह स्मरण रखना होगा कि किसी समुदाय के अंदर की सच्चाई हमेशा उन मार्गों का अनुसरण नहीं करती जिनकी हम उम्मीद करते हैं और जो सही और न्यायपूर्ण होते हैं। दुष्टों को बहुत बार लंबी आरामदायक जिंदगी और दौलत का आशीर्वाद मिलता है और शहर में उन्हें भलाई करने वाला माना जाता है, भला माना जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत भले व्यक्तियों के साथ अन्याय होता है। वे उन ताकतवरों के राज में दुख उठाते हैं जो उन पर अधिकार जताते हैं। सताने वाले अपनी नफरत में और मजबूत होते जाते हैं, जबकि भले लोग दूसरों की दृष्टि में और नीचे गिर जाते हैं। अस्तु श्रोताओ, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि सुलेमान ने इस ना इंसाफी को व्यर्थ निरूपित किया है। तथापि इसके बावजूद वह भरोसा दिलाता है कि भले लोग अंततः दुष्टों से बेहतर करेंगे। कहता है, फिर भी मैं यह जानता हूं कि ईश्वर के भक्तों का कल्याण होगा, क्योंकि वे ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। उत्तरी अमेरिका में येसु समाजी कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी संघ के साथ एक मुलाकात में पोप लियो चौधरी ने कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी समाज के सामने आने वाले मुद्दों का सामना करने के लिए आदर्श जगह हो सकते हैं। पोप लियो ने गुरुवार 25 जून को संघ से कहा कि सच्चाई की खोज को बढ़ावा देकर हाशिए पर पड़े लोगों एवं युवाओं के करीब रहकर और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करके कॉलेज और यूनिवर्सिटी आज मानव के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण जगह बन सकते हैं। अपने भाषण में पोप ने एक रोड मैप पेश किया कि ये संस्थान अपने सदस्यों को समाज के सबसे जरूरी मुद्दों का सामना करने में कैसे मदद कर सकते हैं। पोप ने येसु समाजों की चार मुख्य प्रेरिताएं से प्रेरणा ली। ये विषय वस्तु 2019 में बनाई गई थी और इसका मकसद है अगले 10 सालों के लिए येसु समाज के काम को निर्देशित करना। इसकी प्राथमिकताएं हैं ईश्वर का रास्ता दिखाना, बहिष्कृत लोगों के साथ चलना, युवाओं के साथ यात्रा करना और हमारे साझा घर की देखभाल करना। ईश्वर का रास्ता दिखाने वाले विषय के संबंध में पोप ने बताया कि जो लोग अनुसंधान करते हैं, जो अध्ययन करते हैं और जो सत्य की खोज करते हैं, वे अंततः ईश्वर की तलाश कर रहे हैं, चाहे उन्हें इसका एहसास हो या ना हो। उन्होंने शैक्षणिक समुदाय बनाने के महत्व पर जोर दिया जिसमें सदस्य सच्चाई को जान सकें और युवाओं के बीच ईश्वर के प्रति बढ़ती भूख का जवाब दे सकें। इस संबंध में पोप ने येसु समाजों से आध्यात्मिक अभ्यासों में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित किया ताकि वे महत्वपूर्ण निर्णयों पर आत्मपरक करने में भी मदद कर सकते हैं। पोप लियो ने अपना संदेश इस आह्वान के साथ समाप्त किया कि येसु समाजी अपने संस्थापक संत इग्नासियस लॉयला की मदद से जेसुइट परंपरा को जारी रखें। वैटिकन पब्लिशिंग हाउस ने नई किताब प्रभु हमारा हाथ थामे हुए हैं का अंग्रेजी संस्करण जारी किया है जिसमें पोप बेनेडिक्ट 16 के उन प्रवचनों को एक साथ लाया गया है जो पहले प्रकाशित नहीं हुए थे। ये प्रवचन पोप बेनेडिक्ट 16 ने अपने कार्यकाल एवं अपने इस्तीफे के बाद व्यक्तिगत ख्रिस्त्याग में दिए थे। यह खंड जो मूल रूप से वैटिकन प्रकाशन केंद्र द्वारा इटालियन में इल सिनियोरे चितियेने पर मानो शीर्षक से प्रकाशित किया गया है 2005 एवं 2017 के बीच आगमन काल, चालीसा काल और पास्का काल के दौरान दिए गए उपदेशों को संग्रहित करता है। रिकार्डो बोलाती, लुका कारोसो और फादर फेडरिको लोम्बार्डी एसजे द्वारा संपादित इस किताब में पोप बेनेडिक्ट 16 के पूर्व निजी सचिव महाधर्मदर्श जॉर्ज गेंसवाइन की एक प्रस्तावना और फादर फेडरिको लोम्बार्डी की एक भूमिका शामिल है। ये प्रवचन पोप बेनेडिक्ट 16 द्वारा व्यक्तिगत ख्रिस्त्याग के दौरान दिए गए थे जब वे पोप के रूप में कार्यरत थे और बाद में सेवानिवृत्त पोप के रूप में भी। कुछ प्रवचन प्रेरितिक आवास के चैपल में दिए गए थे जबकि कुछ वैटिकन में मातर एक्लेसिया मठ में दिए गए थे जहां पोप बेनेडिक्ट 16 पोप पद से इस्तीफा देने के बाद रहते थे। हालांकि ये प्रवचन प्राइवेट माहौल में दिए गए थे लेकिन ये पोप बेनेडिक्ट 16 के प्रवचन की गहराई और सादगी को दिखाते हैं। ये उपदेश उनकी पौत्र धर्म ग्रंथ को हमेशा नए सिरे से पढ़ने की काबिलियत को दर्शाते हैं जिससे वे विश्वास, प्रार्थना और दैनिक ख्रिस्त जीवन के लिए रोशनी पाते थे। किताब के पन्ने यह भी दिखाते हैं कि कैसे जोसेफ रात्सिंगर ने अपने विश्वास के केंद्र में आमोद या रूखी सोच को नहीं बल्कि ख्रिस्त के साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखा। प्रवचनों में पोप बेनेडिक्ट 16 बार बार येसु के रहस्य पर लौटते हैं जो अपने लोगों के साथ रहते, उन्हें सहारा देते और उनका हाथ थामे रहते हैं। शीर्षक ही इस मुख्य समझ को बताता है। ख्रिस्त जीवन कोई अकेला रास्ता नहीं है बल्कि ईश्वर की उपस्थिति और दया से चलने वाला सफर है। यह संकलन पोप बेनेडिक्ट 16 के इस शास्त्रीय काम और उनके प्रेरित कार्यों के बीच की एकता को भी दर्शाता है। उनके विचारों में स्पष्टता, आध्यात्मिक गहराई और मसीह केंद्रित फोकस की पहचान है। प्रभु हमें हाथ से थामे रहते हैं पोप बेनेडिक्ट 16 के अप्रकाशित प्रवचनों का पहला खंड है। इसके बाद सामान्य समय के प्रवचनों को समर्पित एक दूसरा खंड आने की उम्मीद है। इटालियन संस्करण 17 मई को तुरिनो अंतर्राष्ट्रीय किताब मेले में पोप बेनेडिक्ट 16 मसीह एक भविष्य हैं
अप्रकाशित प्रवचन शीर्षक द्वारा एक मीटिंग के दौरान पेश किया गया था। वक्ताओं में फादर लोम्बार्डी और इटालियन संगीतकार संगीत लेखक जुआनी निंदो फेरेती तथा संचालक में वैटिकन संचार विभाग के प्रमुख संपादक आंद्रिया तोर्नेली उपस्थित थे। अंग्रेजी संस्करण के साथ प्रकाशित ये पहले अप्रकाशित किताब अब अधिक लोगों के लिए उपलब्ध है, जो पोप बेनेडिक्ट 16वें के उपदेशों और ख्रिस्त को विश्वास एवं इतिहास के केंद्र में रखने के उनके जीवन भर के निमंत्रण से एक नया अनुभव कराते हैं। सागर रविवार 2026 के लिए अपने संदेश में कार्डिनल माइकल चर्नी ने उन मुश्किल चुनौतियों पर जोर दिया है जिनका सामना आज समुद्री कर्मचारी करते हैं, क्योंकि आज समुद्र में तनाव, असुरक्षा, युद्ध और डर तेजी से बढ़ रहा है। हर साल जुलाई के दूसरे रविवार को दुनिया भर की ख्रिस्त कलीसिया सागर रविवार मनाती है। यह दिन समुद्री काम करने वालों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करने का दिन होता है। 2026 में यह दिन 12 जुलाई को पड़ेगा और इसकी विषय वस्तु है आशा के बंदरगाह, नाविकों के साथ कलीसिया। समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने वाले विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल माइकल चर्नी ने सागर रविवार के लिए एक संदेश लिखा है जिसका शीर्षक है, जहाज में लदा माल और व्यापार से परे समुद्र का मानवीय चेहरा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार। आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेतरस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisanpietro.va पर जरूर जाएं।